हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
4: Jildi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
4: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
5: Ab aap sunenge GFM Network par KTN News.
6: Rakhi Sona Yulia Granular Mitti.
7: रीत राबतन जी भी तस्दीक फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू डींदे डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त जेकॾहिं आपने हर्मस खोलण जी कोशिशनि में उमान रुकावट बणियो त अमेरिका उन ते सख़्त बमबारी कंदो। अमेरिका वटि अञा बि हथियारनि जा वसी ज़खीरा मौजूद आहिनि। अमेरिका हिन वक़्त ताईं जेतिरा हथियार इस्तेमाल कया आहिनि उहे मौजूद हथियारनि जे मजमू ज़खीरे जी भेट में तमामु घटि आहिनि। हाणे ईरान खे हथियार फिटा करण ऐं अछो झंडो ऊचो करण घुर्जे। ईरान सां जारी तकरार ख़त्म करण लाइ का तकड़ नाहे। मुंहिंजे इंतज़ामिया ईरान जे पासदारनि इंकलाब सां सिधे राब्ते लाइ हिकु बैक चैनल बि क़ाइमु कयो आहे।

तुर्किया जे सदर रजब तैयब उर्दगान जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सां टेलीफोनिक राब्तो मके दिफाई मुआहिदे गुज़ा में जारी जंग ऐं बतरफ़ी दिलचस्पी वारनि मामलनि ते ॻाल्हियूं परडे॒ही ख़बर तुर्किया जे सदर रजब तैयब उर्दगान अमेरिकी हममुनसिब खे चयो त ईरान सां जारी जंग दौरान हिक ॿिए ते हमला करण बदिरां जंग ख़तम करण लाइ सफ़ारतकारीअ खां कम वठण जी ज़रूरत आहे। तुर्किया इन सिलसिले में पंहिंजो किरदार अदा करण लाइ तयार आहे। इसराइल गज़ा में बाहि वधीक भड़काए रहियो आहे ऐं अहिड़े वक़्त हमला शुरू करे छॾिया आहिनि जॾहिं अमुन मनसूबे जो ॿियों मरहलो नाफ़िज़ थियणो हो।

वसीले पाड़ेसरनि में नफ़रत जो ॿिज छटण जी कोशिश। कुर्द असांजे सरहदनि ते सिक्योरिटी ॾेई रहिया आहिनि, असां सदन शुक्रगुज़ार आहियूं। इस्लामाबाद में एम ओ यू ते सही थियण खां पोइ ईरान जे सतगीर क़यादत गुज़िरियल ॿिनि महीननि दौरान वॾी जंग जी तयारीअ ते ध्यानु ॾिनो। इन सिलसिले में पासदारनि इनकलाब खे मुल्क जी फ़ौज ते वधीक कंट्रोल ॾिनो वियो, जॾहिं त अहम उहिदनि ते इराक जंग जो तजुर्बो रखंदड़ माज़ी जे अंदरूनी क्रिप डाउन में शामिल फ़ौजी आफ़ीसरनि खे मुक़ररु कयो वियो। अमेरिकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल जे दावा अख़बार जी रिपोर्ट मूजिबि ईरान में अंदरूनी काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन्स खे बि वधायो वियो। मिज़ाइलनि ऐं ड्रोन जी पैदावार में तेज़ी आंदी वई। उन सां गॾु ईरानी क़यादत अबन हरमुस ते पंहिंजी गिरफ़्त मज़बूत करण लाइ सामूंडी जहाज़नि ख़िलाफ़ कार्रवायूं कयूं ऐं जंग जो दायरो ॻाढ़े समुंड ताईं वधायो।

0: मोहसिन नकवी सही थो चवे त सिस्टम ठीक न आहे। जेकॾहिं सिस्टम सही हुजे हा त मोहसिन नकवी वफ़ाकी वज़ीर न हुजे हा। मखदूम जमीलुल ज़मान जूं हाला में मीडिया सां ॻाल्हियूं। मखदूम जमीलुल ज़मान चयो त सूबनि जी ॻाल्हि पार्लियामेंट में थियणु घुर्जे। आइन में वाज़े आहे त सूबनि जो फ़ैसिलो पार्लियामेंट कंदी। मोहसिन नकवी खे सूबनि बाबति न ॻाल्हाइणु घुर्जे। नवाज़ शरीफ़ खे पीपीए मां शिकायत जी उमीद न हुई त असांखे बि उमीद न हुई त नून लीग कश्मीर जे चूंडनि में ईअं कंदी।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
3: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आयन त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा प्यारिया आहिनि त वरी ॿीहर छो प्यारियूं। मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे त इन जो आसान जवाब इहो आहे ही ॿार बि असां वटि अल्ला ताला जी हिकु वॾी नियामत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइणु लाज़मी आहे।
4: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
5: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जी हैदराबाद।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
3: Fakiri Dex Ointment.
4: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबले एतमाद मयार।
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
5: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN News.
6: Brought to you by
7: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो
8: मसूस दौरान 28 भारतीय फौजी तस्बियात के कामयाबी से निशानों बनाए तबाह कर।

आहिनि उहे मौजूद हथियारनि जे मजमूई ज़खीरे जी भेट में तमामु घटि आहिनि। हाणे ईरान खे हथियार फिटा करण ऐं अछो झंडो ऊचो करणु घुर्जे। ईरान सां जारी तकरार ख़त्म करण लाइ का तकड़ नाहे। मुंहिंजे इंतिज़ामिया ईरान जे पासदारनि इंकलाब सां सिधी राब्ते लाइ हिकु बैक चैनल बि क़ाइमु कयो आहे।

तुर्किया जे सदर रजब तैयब उर्दगान जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सां टेलीफोनिक राब्तो मके दिफाई मुआहिदे गुज़ा में जारी जंग ऐं ॿतरफ़ी दिलचस्पी वारनि मामलनि ते ॻाल्हियूं परडे॒ही ख़बरू इदारे मूजिबि तुर्किया जे सदर रजब तैयब उर्दगान अमेरिकी हममुनसिब खे चयो त ईरान सां जारी जंग दौरान हिक ॿिए ते हमला करण बदिरां जंग ख़तम करण लाइ सफ़ारतकारीअ खां कम वठण जी ज़रूरत आहे। तुर्किया हिन सिलसिले में पंहिंजो किरदार अदा करण लाइ तयार आहे। इसराइल गज़ा में बाहि वधीक भड़काए रहियो आहे ऐं अहिड़े वक़्त हमला शुरू करे छॾिया आहिनि जड॒हिं अमुन मनसूबे जो ॿियों मरहलो नाफ़िज़ थियणो हो।

0: तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
1: अक्सर वालदेन जो यो चवण हुंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 9:15 a.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मेरा नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाजाहिर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो 1166 पे।
3: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
4: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
3: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। It's 10:30 AM. This time check is brought to you by.
3: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडिएंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 10:45 AM. This time check is brought to you by.
1: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे. अस्करी बैंक.
2: अक्सर मान जो सवाल होंदो असांखे साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालन ताईं छो थी ॾिनी वञे त जेको आहे असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि उन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे हाई रिस्क हूंदा आहिनि उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे ओवरऑल पूरो सूबो पूरो पाकिस्तान तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी पर रेशो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाए
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान खे समझी ॿुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते
4: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज़
5: GFM 91.6
6: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है सुनते रहो GFM 91.6
7: काश हमारे पास जैसी गाड़ी होती चमचमाती भी
8: चलो दिल को संभाल के रखो दुल्हन ये ना हो कि गाड़ी के चक्कर में तुम्हारा ये ड्राइवर के हाथ से निकल जाए

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: असान बे नाइट्रोजन के देर ताई दस्तियाबी करे फसल के अनाब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
1: छम छम छम किताबे ले तुम रोज रोज

अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नारी आहे। हिन जो जवाब बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो, बुधंदा।

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आहिनि त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा प्यारिया आहिनि त वरी ॿीहर छो प्यारियूं। मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे। पंहिंजो आसान जवाबु इहो आहे, ही ॿार बि असां वटि अल्ला ताला जी हिकु वॾी नियामत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइणु लाज़मी आहे।
4: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
5: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
4: जीए FM नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज।

चाहत से पता करते हैं लोगों के दिलों को, चाहत से पता करते हैं लोगों के दिलों को। हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो FM 88 और साथ ही साथ प्यारा सा चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम से दिल, स्वीट सी हंसी, परफेक्ट पर्सनालिटी, खुश मिजाज अंदाज, मुझे कहते हैं आरजे रुखसार, सिंध की आवाज। हाउ आर यू, कैसे हैं आप? आई होप कि जहां जहां भी मौजूद हो बिल्कुल टिप टॉप सेट कूल, एक एकदम स्ट्रांग हेल्थ के साथ मुझे सुन रहे हैं। जहां जहां भी मौजूद हो बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद है और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरी पूरी तैयार हूँ पूरे पूरे एक बजे तक, क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुजार है, जो कि आप सुनते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 11 to 1 PM आपका मेरा साथ रहता है। और ये खूबसूरती भरा खूबसूरत साथ जो कि आज भी जारी और सारी रहेगा पूरे पूरे एक बजे तक। तो प्रोग्राम में अगर हम सबसे पहले वक्त की बात करें तो 11:23 जो कि पाकिस्तान का मेरे वक्त तमाम तर लोगों की घड़ियों में बज रहा है। और इसके अलावा वो लोग जो कि इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में है, ट्रक में है, रिक्शा में है, कार में है, बाइक में है, जिस पे भी जहां भी जा रहे हैं आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी, बट लेट द नेवर अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। बस ये खुदा के लिए थे मौजूद और तवक्कुल के खुदा के लिए थे मतलब वो लोग जिन लोगों की आज सालगिरह है उनको कहेंगे मैंने मैंने हैप्पी रिटर्न सैटरडे हैव अ बर्थडे टू यू स्केला। वो लोग जो कि बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून। जो लोग लाइफ में कुछ अच्छा, कुछ बेटर, कुछ बड़ा, कुछ यूनिक, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो विश यू अ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। बहुत सारी बेस्ट विशेज आप लोगों के लिए कि आप अपने हर काम में कामयाब होते रहें, आमीन। तो मेरी आवाज जिन जिन गलियों और शहरों, शहरों शराहों, वादी और पहाड़ों, गलियाओं और मरगुजारों, घर और बाजारों, छोटी बड़ी कारों, मेरे परेशानों, ये आगे लोग हजारों में सुनी जा रही है। तमाम सुनने वालों को, चाहने वालों को, मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे मरहबन बिकुम, अहलन वसहलन, मरहबा बखैर, आगे ले जी आया नुसरत बिस्मिल्लाह, बोंजोर शानिहा एंड वेलकम इन टू जिंदगी गुलजार है। तो प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं प्रोग्राम में, प्रोग्राम का पहला गाना सुनेंगे, एंजॉय करेंगे, आगे चलेंगे, स्टे ट्यून्ड।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by.
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडिएंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
3: अक्सर वालदेन जो यो चवण हुंदो आ त असा बार बार पंजे बारन के पोलियो जा कतरा छो प्यारियों जो त असा जे बार पहिरी पोलियो जा कतरा पी चुको आ। मुंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लैल है। मां बारन जे शोबे में खिदमत अंजाम दिया तो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीण सा बार जी इम्यूनिटी जका वा बेहतर थिए थी। हाणे जका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
0: अभी ॿुधो पिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़।
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज़।

0: धारजो माखे पिंजरे में न बांधो बाजे न धारजो। बाजी कुछ हमारे पास दोस्त भी आए
1: ओके शामिल करें।
0: हाँ मेरा भाई है जाहिर मन जतोई जाद जतोई जाया जतोई औतेखा बाद में साजन जतोई
1: ओके जी थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज थैंक यू। और 03000 111 3488 इसके ऊपर नेक्स्ट कॉल रिसीव करेंगे आप लोगों की जो कि आप लोग कर रहे हैं। सो गाना सुनाएंगे आप लोग हमें अभी। नेक्स्ट कॉलर हेलो हेलो ओके जी कॉल ड्रॉप हो गई है 03000 111 3488 के ऊपर आप लोगों की बहुत सारी लाइव कॉल्स को इंटरटेन किया जा रहा है।

0: सक्कर FM 88
1: सक्कर की आवाज चा अहा
2: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद से कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
5: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GFM 91.6।

0: लिए तो आर्च अपनाएं, आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडिएंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
1: अक्सर वालदेन जो यो चवण हूँ असा बार बार पंजे बारन के पोलियो या कतरा छो पे असाजे बार पे ही पोलियो या कतरा पी चुको है। मुझो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल है। मां बारन जे शोबे में खिदमत अंजाम
2: ओके। किसका गाना है ये?
3: ये मुमताज मौलाई का गाना
2: है। चले मैं सर्च करती हूँ, इसको डेडिकेट करना है।
3: जी आप सुन रहा है मेरा प्रोग्राम, शमी दिल सुन रहा है, ममता सुन रहा है, और जो

0: हाँ सब आप लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं जी 8881 पे और कमेंट्स कर रहे हैं हमारे फेसबुक पेज के ऊपर दैट इज FM88 जी FM88 इस पेज के ऊपर आने के बाद आपको पोस्ट मिलती है पहली एंड वो होती है जिंदगी गुजार है जिसे नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं ठीक है और आप लोग क्या कर सकते हैं आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं तो जरूर ज्वाइन करें एंड मेरा साथ दें साथ साथ हम कॉल्स को रिसीव करने जा रहे हैं नेक्स्ट कॉलर चेक करेंगे हेलो वालेकुम अस्सलाम कौन कहाँ से
1: अरमान अली आप मोरो से
0: अरमान अली पहली दफा कॉल कर रहे हैं
1: जी पहली दफा
0: ओके प्रोग्राम सुनते हैं
1: चार काले हमने किए आपने की नहीं उठाई बड़ी बात है
0: ये एक उठाइए तभी तो आपसे बात हो पा रही है
1: अभी तो उठाई है ना पहले मसरूफ थी
0: बस क्या करें सबको यही शिकायत है कि मैं कॉल नहीं उठाती असल में देखें आप हैं और आपके साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी नहीं रिसीव हो पाती किसी और के लग जाती है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है तो अब लग गई है अब सारे गम और शिकवे शिकायत भुला कि आप मुझे एक अच्छा सा गाना सुना दें
1: बस ऐसे ना करो पहली कॉल आए जिसकी उठाना उसकी मजबूरी भी समझो ना
0: नहीं मजबूरी तो हम समझते हैं बिल्कुल तभी तो कॉल्स लेते हैं आप लोगों की आप सबकी ओके गाना सुनाना है गा के सुनाए ना
1: हम नहीं सुनाएंगे आप
0: मैं सुनाऊं चले मैं सुनाती हूँ किसको डेडिकेट कर रहे हैं ओके थैंक यू सो मच अपना बहुत सारा ख्याल रखें अल्लाह हाफिज 03000113488 के ऊपर एक और कॉलर हेलो कोई है मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है तो हम चलते हैं आगे और साथ साथ आप लोगों के कमेंट्स भी रिसीव होते जा रहे हैं मुझे

आज का जो टेम्पटेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि काली कराएंगे कड़क कड़क करते कबाब कमाल के करारे हो गए, ठीक है ये कहना है। काली कढ़ाई में कड़क कड़क करती कबाब कमाल के करारे हो गए, इसको आपने प्रैक्टिस करना है। और जब हम अगले घंटे में वापस आएंगे तो हमारा सेगमेंट होगा बोलो तो माने, ठीक है, उसमें आपसे ये हम सुन रहे होंगे और जो बंदा अच्छा अच्छा ज्यादा ज्यादा सही सही बोलेगा वो विन करेगा हमारे सेगमेंट को। तो आपने कहना है कि काली कढ़ाई में कड़क कड़क करते कबाब कमाल के करारे हो।

गाना हमारा ऑलमोस्ट पूरा पूरा खत्म हो चुका है, सो हम क्या करेंगे, हम एक और गाना प्ले करेंगे एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल बाय हसन एंड रोशन, तो इसको हम सुनेंगे और इंजॉय करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे से प्ले करेंगे एंड यहां से हम इसको सुनना स्टार्ट करेंगे. स्टे ट्यून्ड, इट्स अ कमर्शियल ब्रेक, साथ में न्यूज ब्रेक.

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर।
1: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
2: GAFM 91.6।
3: It's 12 p.m. This time check is brought to you by
4: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
5: Jildi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
4: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
5: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
0: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
6: Brought to you by
7: Sona Yulia Granular. Mitiye jo maan wa.
8: भारतीय दस्तावेजी फिल्म के हकीकतन जो उक्तर करार ॾेई छॾियो। ISPR पारां जारी कयल पधराई में चयो वियो आहे त मुअरका हक़ खे हिकु साल गुज़रण बावजूद भारत हक़ीक़त खे मुंहुं ॾियण खां इनकारी आहे। ऑपरेशन सिंदूर बाबति तयार कयल भारतीय डॉक्यूमेंट्री हक़ीक़तन जो उक्तर ड्रामाई ऐं प्रोपोगेंडा ते ॿधल आहे। भारत ऑपरेशन सिंदूर बाबति तारीख़ बिगाड़े पेश करे रहियो आहे। डलगाम वाके जा जवाबदार 28 जुलाई ते मारिजी विया। भारत 7 मई ते कंहिंखे सज़ा ॾिनी। फिल्मी अंदाज में पेश कयल इहा समूरी दास्तान कूते वधल आहे। भारत मुअरका हक़ में नाकामी खे तस्लीम करण बदिरां तारीख़ पंहिंजी मर्ज़ीअ मुताबिक़ पेश करण जी कोशिश कई। मुअरका हक़ दौरान पाक फ़ौज भारतीय जारियत खे नाकाम बणाईंदे 8 भारतीय जहाज़ किराया ऐं ऑपरेशन बुनियान अल मसूस दौरान 28 भारतीय फ़ौजी तस्वीयात खे कामयाबीअ सां निशानो बणाए तबाह कयो। आबना हरमुज पार करे निकरंदड़ जहाज ते हमले जी इतलाह। हमले जो हिकु ॼणो मारिजी वियो। बरतानवी मेरी टाइम्स ऑपरेशन चयो इतलाह मिलियो आहे त जहाज खे हिकु ॼण ॼातल नोत जे प्रिज टाइकल जा सां निशानो बणायो वियो आहे। हमले में हिकु ॼणो मारिजी वियो ऐं जहाज जे इंजन रूम खे नुक़सान पहुतो। ईरान अमेरिका छिकताण घटाइण में तुर्की किरदार अदा करे रहण लाइ तयार आहे। तुर्की जे सदर रजब तैयब एर्दोगान ऐं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प में विच में टेलीफोनिक राब्तो थियो आहे। रजब तैयब एर्दोगान चयो त ईरान अमेरिका छिकताण घटाइण में तुर्की किरदार अदा करण लाइ तयार आहे। बानी पीटीआई खे अस्पताल मुंतकिल करण ऐं मुलाक़ातूं बहाल करण बाबति केस जी ॿुधणी सुप्रीम कोर्ट जे 3 रुकनी बेंच जस्टिस शाहिद वहीद जी सरबराई में ॿुधणी करे रही आहे। जस्टिस नईम अख़्तर अफ़गान ऐं जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम 3 रुकनी बेंच जो हिसो आहे। केपीके जो वॾो वज़ीर सोहेल आफरीदी अदालत मां पुरमीद। कराची में पेट्रोल लिवी ऐं ॿियनि मुतालबनि जी मञता लाइ जमायत इस्लामी जो 3 ॾींहं बि एहतियात जारी। अमीर जमायत इस्लामी कराची मौजूद ज़फ़र जो चवण आहे त पेट्रोलियम लेवी जे नाले ते उगाड़ी टैक्स वापसि वरितो वञे। सॼे पाकिस्तान जे गवर्नर हाउसेज ऐं पंजाब जे वज़ीर आला हाउस में धरणा शुरू थी विया आहिनि। हुकमराननि जा अवाम ते ज़ुल्म ख़तम न थिया त भतो टैक्स लॻाए अवाम खे निपोड़ियो पियो वञे। मीरपुर भठोरो में पाणीअ खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जो एहतजाज। महमूदाबाद शाख में पाणी जी शदीद खोट जे ख़िलाफ़ आबादगारनि हारियुनि मीरपुर भठोरो सजावल रोड ते धरणो हयो। ट्रैफिक मुअतल। आबादगारनि जो चवण आहे त पाणी खोट सबबि हज़ारे एकड़नि ते पोखियल सारियुनि जा बीजारा सड़ी विया आहिनि। पाणी फराहम करे मुआशी वधारीअ खां बचायो वञे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: अक्सर वालदेन जो यो चवण हों तो असा बार बार पंजे बारन के पोलियो का कतरा छो प्यारियों जो असा जे बार पे ही पोलियो का कतरा पी चुको है। मुझो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लैल है। मां बारन जे शोबे में खिदमत अंजाम दिया तो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीण से बार जी इम्यूनिटी जका वह बेहतर थिए थी। हाँ जका कैंपेन अचे थी जैमें असा जो पोलियो जो डींदी उन में का भी सुई इस्तेमाल न थी बगैर कें दर्द के वैक्सीन जका पांजे बार के करायो तो जी असो पाकिस्तान इन पोलियो जड़े मुजी मर्ज में जो महफूज रह।
3: तहजीब सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
4: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, GAFM की आवाज।
3: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मैं नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज अ पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से जाता है तो आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
4: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
5: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज़
6: GFM 91.6।

0: एक कॉलर है मेरे साथ लाइन पे, चेक करेंगे कॉलर कहाँ से. जी हेलो.
1: हेलो
0: हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं?
1: वालेकुम सलाम बाजी, रंजन कोरी मीरपुर खास कोरीकोट से.
0: अरे वाह क्या बात है, पहली दफा कॉल कर रहे हैं?
1: मैं कर रहा हूँ जिसपे वो पुर लगाओ गाना सुनाओ उस पे एफएम पे कॉल कर रहा.
0: अच्छा अच्छा, मतलब पहली दफा कॉल की है ना?
1: जी जी.
0: ओके तो गाना सुनाना है आपने, टंग ट्विस्टर नहीं सुनाना?
1: नहीं नहीं, गाना सुनाना है, जब तक गाना लगा रहा हूँ आप जाके लगे.
0: चले फिर सुना दे.
1: हिंदी में सुनाऊ? दिल में जा मालिक हो अल्लाह मुझे यार की पारत सही.
0: बस
1: हाँ बस इतना आता है.
0: ओके कुछ और कहना है?
1: आप बस दोस्तों को डेडिकेट करना है.
0: ओके कीजिए जल्दी से.
1: बचाओ पांच के लिए न्याज जूने जो इमाम बख्श जूने जो जूने जो डॉक्टर लाल चंद.
0: ओके जी थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज. और
2: मैं लिखूं तो आ जाए, मैं बैठ लिखूं
0: 03000 1348.

0: ओके नेक्स्ट कॉलर लाइन पे मौजूद है, चेक करेंगे कॉलर कहाँ से। जी हेलो,
1: वालेकुम सलाम,
0: कौन बात कर रहे हैं?
1: की बाजी हटरी गुलाम साहब।
0: ओके प्रोग्राम सुनते हैं भाई?
1: जी जी प्रोग्राम सुनता हूँ, सारा प्रोग्राम जो है
0: सारा प्रोग्राम सुनते हैं। तो टंग ट्विस्टर सुना है, बोलेंगे
1: जो बाजी मैं गाना सुनाता हूँ नूरजान का, टंग ट्विस्टर नहीं आता मुझको गाना
0: सुना दे।
1: गाए की दुनिया तुम रे सुरीले रंग में निराले रंग में,
0: ओके वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। और गाना सुनाने वाला सेगमेंट खत्म हो चुका है भाई लोगों, तो जितने भी लोग आ रहे हैं गाना सुना रहे हैं, गाना नहीं सुनाना, टंग ट्विस्टर बोलना है। आपने कहना है कि काली कढ़ाई में कड़क कड़क करते कबाब कमाल के करारे हो गए, ठीक है। एक और कॉलर इंटरटेन करेंगे। हेलो, अस्सलाम
2: वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है, कहाँ से?
2: मैं रुखसार बात कर रही हूँ, मीरपुर खास से।
0: रुखसार बात कर रही है, मीरपुर खास से। रुखसार कैसी हैं?
2: मेरी एक रिक्वेस्ट थी तमाम लिसनर से, आप समेत
0: के जो
2: मुझे
0: समझा,
2: प्लीज मेरे हक में दुआ करें, मैं बहुत परेशान हूँ।
0: ओके ठीक है, अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियाँ दूर करे और बहुत जल्द करे, आमीन
2: आमीन आमीन।
0: और कुछ कहेंगी?
2: याद रखे। नहीं बहुत शुक्रिया, मैं कब से आपकी कॉल लगाना चाह रही थी लेकिन कॉल लग नहीं रही थी।
0: कॉल नहीं लग रही थी, चले अब लग गई एक कॉल।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो, उधंदा रहो।
1: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by
2: Hemé Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे चार गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी। Hemé Diamond Glow Bleach Cream.
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
4: अक्सर मान जो सवाल हों असा के सही पोलियो जी वैक्सीन 10 सालन ताई छोती दिनी वने तो जको असा वट जेके बार आन अक्सर कमजोर आन उनमें इम्यूनिटी तमाम घट हुंदी आ हाई रिस्क हुंदा आन उने के अलावा असा जी एरिया हाई रिस्क का ओवरऑल पूरो सूबो पूरो पाकिस्तान तंजे करे तहां के वैक्सीन जे लाए उमर जी हद कोने कैंप जगह ते वैक्सीन कैंप उमर ते पोलियो लगी सके तो कै उमर ते वैक्सीन करे सके पर रेशियो वधी का 10 साल के घटा तंजे करे असा जो रिक्वेस्ट आए सब जी के बूस्टर डोज लगराए
0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज
5: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: सकते हैं कॉल्स के थ्रू. तो कॉलर्स को आज हम ले रहे हैं. और हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम.
0: कौन बात कर रही हो? सरदर्द?
1: जी सरदर्द बात कर रही हूँ.
0: सरदर्द कैसी हो?
1: बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताए कैसे?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ. मेरी बातें तो नहीं सुनी ऑफ एयर?
1: बिल्कुल सुनी.
0: अच्छा तो मुझे बताओ कि टंग ट्विस्टर सुना बोलोगी? सुना है?
1: काली कढ़ाई में कड़क कड़क करती दबाव कमान से करा रहे हो गए. काली कढ़ाई में कड़क कड़क करती दबाव कमान से करा रहे हो गए. काली कढ़ाई में कड़क कड़क करती दबाव कमान से करा रहे हो गए. काली कढ़ाई में कड़क कड़क करती दबाव कमान से करा रहे हो गए. काली कढ़ाई में कड़क कड़क करती दबाव कमान से करा रहे हो गए. काली कढ़ाई में कड़क कड़क करती दबाव कमान से करा रहे हो गए. काली कढ़ाई में कड़क कड़क करती दबाव कमान से करा रहे हो गए.
0: आगे स्टॉप. वेरी नाइस. क्या स्पीड पकड़ी है, क्या फ्लो आता जा रहा है सर दर्द का. मतलब क्या कमाल है, कमाल कमाल.
1: वैसे घर वाले भी यही कहते कि सरदर्द कमाल के
0: है ना, सरदर्द कमाल की है. वैसे घर वाले तो किसी और नाम से बुलाते होंगे, सरदर्द थोड़ी कहते होंगे. वो हमें नहीं पता, वो अलग बात है. है ना, है ना. चलें जबरदस्त. कुछ और कहना है अच्छा सा?
1: कहें मुलाकात आपको, मुझे दोनों को एक साथ मिल जाएगा.
0: सॉरी मुझे क्या?
1: अल्लाह पाक आपको और मुझे
0: साथ उम्र नसीब करे. आमीन सुमा आमीन. क्या खूबसूरत बात कही है आपकी. अल्लाह पाक आपकी जबान मुबारक करे.
1: आमीन.
0: ओके अच्छा और कुछ कहना है?
1: अल्लाह हाफिज.
0: थैंक यू. ये थी सरदर्द.

अच्छा कॉमेंट रीड कर रहे थे गुलाम मोहम्मद मरी बलोच, हमें सुन रहे हैं रुखसार शो जबरदस्त है, आपकी आवाज भी बहुत जबरदस्त है, थैंक यू सो मच। अच्छा ये रुखसार मरी है, रुखसार मरी मीरपुर खास से, थैंक यू रुखसार। रेहान खान, रेहाना खान सॉरी, रेहाना को मैंने रेहान बना दिया। अच्छा रेहाना खान भक्कर से हमें सुन रही है जी, थैंक यू। और मेरे ख्याल से मैं एक और गाना प्ले कर देती हूँ, एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल। और एक अच्छा सा गाना मैं सोच रही हूँ कि आज जाए मेरे सामने और मैं उसको प्ले कर दूँ। सो एक अच्छा सा गाना हम लगाते हैं जल्दी से और वो सुनते सुनते हम जाएंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की जानिब भी। आपने कहीं नहीं जाना, मेरा साथ देना है क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो बुधंदा रहो।
1: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूर इहो सबबु न बणंदो।
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादे खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
0: अभी बुधो प्यार जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर
1: GFM 88.9।
0: अस्सलाम, कौन कहाँ से?
1: मोहम्मद इस्माइल है, पुलशहर का।
0: मोहम्मद इस्माइल कैसे हैं? ठीक है,
1: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी यहाँ सुनाओ।
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ, मुझे बताइए प्रोग्राम सुनते हैं?
1: जी जी अल्हम्दुलिल्लाह।
0: कौन सा है
1: आपका? रोज प्रोग्राम सुनता हूँ।
0: कौन सा?
1: मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 11 to 1 PM।
0: अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है।
1: कैसी हैं बाजी, ठीक ठाक?
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। लास्ट लकी कॉलर हैं आप, मुझे बताइए आज की अच्छी बात।
1: आज की अच्छी बात ये है कि किसी को सताना नहीं चाहिए, किसी का दिल दुखाना नहीं चाहिए।
0: वेरी नाइस। और कुछ कहना है?
1: जी मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ।
0: सुना दे।
1: मैं सुनाना ये चाहता हूँ, अजीब कमाल करती हैं आपकी यादें। अजीब कमाल करती हैं आपकी यादें, सोचूं तो बिखर जाऊं, ना सोचूं तो किधर जाऊं।
0: अरे वाह, क्या बात है जी, क्या बात है। और कुछ कहना है?
1: बस और सबको मैं यही कहूंगा कि खुश रहें और खुश रहना सीखें, दूसरों को भी खुश रहने दें।
0: ओके, थैंक यू सो मच, बहुत सारा ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफिज। और ये था लास्ट एम लकी कॉलर। और इसके अलावा जी प्रोग्राम का टाइम भी बहुत लिमिटेड है।

हम लेंगे आपसे इजाजत और आज का जो सेगमेंट रहा है बोलो तो मानो, जिसमें आज के विनर्स हैं जी, या विनर्स क्या मतलब एक ही विनर है और वो है द वन एंड ओनली हमेशा की तरह सरदर्द। सरदर्द ने आज भी बहुत अच्छा टंग ट्विस्टर बोला। फाइनली हम लेंगे आपसे इजाजत, इंशाल्लाह मेरी आपसे चुटचार होगी कल ऑन सेम टाइम सेम चैनल सेम शो विद द सेम आरजी। सुनना मत भूलिएगा, जिंदगी गुलजार है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सो दिस इज मी आरजी।

पाकिस्तान भारत में थींदड़ गिरफ़्तारियुनि खे पाकिस्तान सां जोड़ण जो इल्ज़ाम रद्द करे छॾियो। भारतीय गृह वज़ीर जूं दावाऊं बेबुनियाद करार। परडे॒ही खाते जे तर्जुमान जो चवण आहे त भारतीय गिरफ़्तारियूं ऐं पाकिस्तान ते इल्ज़ाम सिर्फ़ अंदरूनी सियासी मक़सद हासिल करण लाइ प्रोपोगेंडा आहे। DGISPR जे समर इंटर्नशिप 2026 में 21 हंधनि ते 6150 खां वधीक शागिर्दनि ऐं शागिर्दाणियुनि सां वेक। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी क़ौमी सलामती, दहशतगर्दी, इतलाती जंग ऐं सोशल मीडिया जे चैलेंजेस ते ॻाल्हियूं कयूं ऐं शागिर्दनि जे सवालनि जा दलीलनि सां जवाब ॾिना। ISPR ऑपरेशन सिंदूर बाबति तयार कयल भारतीय दस्तावेज़ी फिल्म खे हक़ीक़तनि जे मौरका हक़ खे 1 साल गुज़रण बावजूद भारत हक़ीक़त खे मुंहुं ॾियण खां इनकारी आहे। ऑपरेशन सिंदूर बाबति तयार कयल भारतीय डॉक्यूमेंट्री हक़ीक़तनि जे उत्तर ड्रामाई ऐं प्रोपोगेंडा ते ॿधल आहे। भारत ऑपरेशन सिंदूर बाबति तारीफ़ आहे पहलगाम कंहिंखे सज़ा ॾिनी। फिल्मी अंदाज़ में पेश कयल इहा समूरी दास्तान कूड़ ते ॿधल आहे। भारत मारकाए हक़ में नाकामी खे तस्लीम करण बदिरां तारीख़ खे पंहिंजी मर्ज़ी मुताबिक़ पेश करण जी कोशिश कई। मारकाए हक़ दौरान पाक फ़ौज भारतीय जारियत खे नाकाम बणाईंदे 8 भारतीय जहाज़ किराया ऐं ऑपरेशन बनियान अल मसूस दौरान 28 भारतीय फ़ौजी तस्मीनात खे कामयाबीअ सां निशानो बणाए तबाह कयो।

0: quiet. You're very disrespectful in front of this young man. Okay? Don't you find her disrespectful? Piana says, quiet. Who are you with?
1: Louisiana.
0: Fake news. You're fake news. You're loud. You're a loud, boisterous person. You're fake news. Be quiet. Be quiet. Be quiet. You're a fake reporter, and you report fake news. Go ahead.
2: Mr. President, is there enough?
3: तू गौर करण वारी कूड़ी रिपोर्टर आहीं कूड़ियूं खबरूं ॾींदी आहीं अमेरिकी सदर औरत साफ़ीअ ते डमिरजी पियो व्हाइट हाउस में मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल दौरान CNN जे रिपोर्टर अमेरिकी सदर खां सवाल कयो त सदर ट्रम्प खेसि बेअदब चई नज़रअंदाज़ कयो औरत साफ़ी ॾखण कोरिया बाबति सवाल कंदी रही पर ट्रम्प खेसि चुप करण जो चयो तूं अजायो गौर कंदी आहीं तूं कूड़ी रिपोर्टर आहीं ऐं कूड़ियूं खबरूं ॾींदी आहीं यूएसएस लिंकन ते खाधे जी घटाई वारी CNN जी ख़बर कूड़ी हुई।

0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
1: अभी बुधोपिया GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सुनते जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सुनते जो आवाज बुधंदा रहो।

0: सवाल हूंदो असांखे, साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे? त जेको आहे असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, उन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान। तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हदि कोन्हे, कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थो, पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाए।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है, GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

तो इतनी सारी बातें करने के लिए आप हमारे साथ जरा रेडी शेडी हो जाइए, क्योंकि प्रोग्राम में आप लोगों का साथ होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। जब आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तो हमारे प्रोग्राम में चार चांद लग जाते हैं। तो बिल्कुल हमारे प्रोग्राम में चार चांद लगाइए और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए। और कैसे आप हमें ज्वाइन करने वाले हैं, क्या ये सारा प्रोसेस होने वाला है वो बिल्कुल समझाएंगे। इसी के साथ वाकई आप लोग कितना जान चुके हैं मुझे। अरे इस बात को लेकर मैं कभी कभार ये सोचने लग जाती हूँ कि इतना तो मैं शायद खुद को नहीं जानती जितना आप लोग मुझे जानते हैं। अच्छी बात है वैसे ये, अगर ऐसा होता ना, अगर हम डेली बेसिस के ऊपर किसी से मिलते हैं, किसी से मुलाकातें होती हैं हमारी, तो हम ये जरूर समझ जाते कि अगला जो इंसान है वो कैसा है। क्योंकि कहते हैं ना, मिलने से चीजें और बातें जो ना वो जरा खुलकर सामने आ जाती है। तो बिल्कुल ऐसा ही सीन है, अगर आप रोज किसी से मिलेंगे, रोज किसी से बातें करेंगे, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता उस इंसान के बारे में तमाम चीजें, तमाम बातें मालूम होना स्टार्ट हो जाती है। तो बिल्कुल वैसे ही आप लोगों का हमारा बॉन्ड भी हो चुका है जी इस प्यारे प्रोग्राम में। तो आप लोगों को वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है। यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम लोगों को वेलकम इन खुशामदीद, साथ ही साथ आपकी मोहब्बतों, समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और इसी के साथ साथ आप सर अपने हाल चाल बताइए। सो डियर लिसनर्स, अंत की हालत कैसे ही आपकी हालत है, उम्मीद है शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबकुल मोड के साथ सबकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे, तो आपकी जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है। और जनाब फाइनली हमने यहाँ पर एंट्रियां मार ही ली। आपको पता है जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरी पूरी तीन बजे तक। यानी कि पूरी तीन बजे तक मैं आपके साथ मौजूद रहूंगी, इसी उम्मीद के साथ कि आप भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। तो चलिए जी, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद रहिए। और उसके अलावा यहाँ पर बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए, यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रही थी। ऐसे बहुत सारी अंटियां, अम्मियाएं, खालाएं, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी, यानी कि लंच बनाने के दौरान। सुबह अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब जबरदस्ती गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपके होंठों पर 440 उल्की संभालाने का काम करेगी भाईजान ये सिद्रा। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 400 चाहते हो यहाँ पर।

ओके जी, क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा कसीदा यहाँ पर आपने हमारे साथ सुना, और इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं चलते का नामस्ती आपके सिद्धराव के साथ मौजूद है। मेरे साथ कौन है मुझे बताएंगे, और जरा आपने होने का एहसास दिलाएंगे और किस तरह से आप हमें ज्वाइन करने वाले हैं वो बताएंगे, लेकिन साथ साथ आज के प्रोग्राम का टॉपिक क्या होने वाला है उसकी जानकारी भी जरा आ जाते हैं। तो बिल्कुल जी, आज का जो सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगी वो कुछ इस तरह से होने वाला है कि आप सब लोगों ने मुझे ये बताना है कि वैसे वो तो पहले जब घर में मेहमान लोग बहुत ज्यादा और घर में मतलब एक खुशी वाला माहौल होता था, लेकिन आजकल के दौर में देखा जाए तो अगर मेहमान घर में आ जाते हैं तो सबसे पहले उन लोगों का मुंह बन जाता है। तो मेरा सवाल आप लोगों से कुछ इस तरह होने वाला है कि आपने मुझे ये बताना है कि जब आप घर जाते हैं या फिर आपको घर में बताया जाता है कि आज घर में मेहमान आ रहे हैं तो आपका क्या रिएक्शन होता है, आप क्या करते हैं, आप क्या कहते हैं, ये आज आप मुझे जरा बताएंगे। मैं जरा आज ये जानना चाहूंगी कि कहां कहां पर किन किन के घरों में अभी तक मेहमान नवाजी बाकी है, ये पर बात करने वाले हैं। अगर आपके घर में मेहमान आते हैं और आपको बताया जाता है कि भाईजान आज हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं या फिर मेहमान आ चुके हैं तो आपका क्या रिएक्शन होता है, आपका क्या रद्दअमल होता है, और अगर आप हमारा शो सुन रहे हैं पहली मरतबा रोजाना या फिर आप आया करें, ऐसा कीजिए।

0: आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
1: अभी बुधोप्यार जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता दे बसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा।

देखा जाए तो आजकल के टाइम में लोग एक दूसरे के घर आना भी थोड़ा कम हो चुका है सिस्टम। पहले बहुत ज्यादा ऐसा होता था भाई, रिश्तेदारियां कुछ ज्यादा ही होती थी, रिश्तेदार आपस में मोहब्बतें होती थी लेकिन आजकल ऐसा कुछ नजर नहीं आता, हमें तो नहीं आता। आप मुझे ये बताएं, वैसे गांव में ये चीजें अभी तक मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत चल रही हैं, लेकिन सिटीज का हाल तो भाई बहुत ही बुरे तरीके से है। लेकिन आप मुझे ये बता रहे हैं आज कि अगर आपके घर मेहमान आ जाए और आपको कोई बताए कि हाँ जी मेहमान आ रहे हैं या फिर आ चुके हैं, तो आपका क्या रिएक्शन होता है इस बात के ऊपर?

आगे से बोलेंगे भाई अपने लिए जो आपने खाना है ना वो लेकर आया करें। अच्छा कीर्ति आप ही सॉन्ग की रिक्वेस्ट है बिल्कुल बिल्कुल गानो तो तवान जो हलाइंदास जी गाने खा सवा की है तां सने प्रोग्राम में ईंदा और न खा अलावा वासु भाई कीर्ति अदी सडो जवाब न दीदम काथे माइटर न बुद्धि वठन ये न था अच्छा नहीं।

0: मैं मायरा हूँ। अच्छा मायरा हमारे साथ है, सलाम दीजिएगा अनमोल को। चलें अनमोल को आपका सलाम पहुँच गया, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं मायरा। और हैं जी हमारे साथ मायरा दोबारा, कहती सिद्रा यार आप मुझे सॉन्ग तो सुनाए ना प्लीज, अगर नहीं सुनाएंगी तो फिर भी ठीक है, वैसे भी मैं तो आपको सुनने आती हूँ सॉन्ग नहीं। चले मैं आपकी पसंद का गाना लगाऊंगी, कौन सा गाना सुनना चाहती है? और कहती है एक बात तो बताओ, आपकी आवाज बहुत प्यारी है ये सच्ची? नहीं यहाँ पर कुछ वॉइस चेंजर लगा कर बोलती हूँ। ये कैसा सवाल है?
1: इश्क मेरी ब्यूटी, दिल में आग लगाए, आतिश मेरी ब्यूटी, आतंक
2: ना मचाए। अक्सर वालदेन से सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मेरा नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बजाहिर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार

तेजी आपको वेलकम कहा जाता है थैंक यू के साथ साथ। और उनके अलावा निधि कहती हैं कि लड़कों के लिए अच्छी बात होगी। अच्छा नहीं, मुझे लगता है कि लड़कों के लिए ये होता है कि लड़कियां तो घर में बैठी होती हैं, मेहमानों से बस बातें करती हैं। लड़के बेचारे जाते हैं, गर्मियां हो सर्दियां हो, बाहर से जाकर चीजें लेकर तो मेहमान खाते हैं। तो लड़कों के लिए भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि वो ऐसे हैं वो ऐसे हैं। वो भी अच्छे हैं, उनका भी बराबर का काम होता है। और कहती है ऐसा बोलो ना, ये आरजीनी AI। हाँ बाबा, मैं AI हूँ।

0: अभी क्या बात है, बिल्कुल जी आप लोगों के साथ है, चिट चैट चल रही है हमारी।
1: मुझे कहते हैं बिल्ली, मुझे कहते हैं।
0: अच्छा, ये हमारे साथ है स्टेशन अब्दुल्लाबाद खां मारूफ हुसैन शेर। प्रोग्राम सुठो हले पयो, प्लीज प्लीज सरमन सिंधी सलाम टू ऑल संगत। ओके ओके भाजी, फरमाइश हलाइण जी कोशिश कयूं था। थैंक यू तव्हां सां सगॾु मौजूद आहियो।

0: भली अचन पड़ हिकड़ी रात रहन अदी पर
1: या भी गाल आए।
0: अच्छा मायरा कहती माशाल्लाह सिद्रा, मेरे हस्बैंड मुझसे जब लड़ाई करते हैं तो मैं आपका शो सुने आ जाती हूँ, कसम से सारा दुख भूल जाती हूँ और डांस करना शुरू हो जाती हूँ। बस ॾिसो असा दुख वारे माण्हुनि खे बि खिलाए छॾींदा आहियूं। वैसे यार सुठी ॻाल्हि आहे, बस दुख न कंदा कयो हस्बैंड वीचारे जो। ऐं हुन खां अलावा नदी कहती है उनको ना मेहमानों के साथ बिठाया ही नहीं करे। सही है, अच्छा मोहम्मद राशिद अमान की थी सिस्टर सिद्रा, रेगुलर की तरह आपके प्रोग्राम को खूब एंजॉय कर रहा हूँ, सबको सलाम। वालेकुम अस्सलाम, प्यारे भाई को वेलकम कहते हैं। अच्छा मोहम्मद मीरन जखरानी भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जेकब आबाद से आपको भी वेलकम कहते हैं। राशिद अमान भाई कहते हैं राज रखे हुए हैं तेरे पास, तुझको रखा हुआ है राजू में। आए हाय, ओ या गाल।

0: touch.
1: It's 2:15 PM.
2: This time check is brought to you by
3: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
4: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
5: अक्सर वालदेन सवाल की दा हैं तो जड़े असा जे बारन के पोलियो वैक्सीन लगी चुकी है तो हाने बाद में उन्हें के केड़ी जरूरत पड़े थी। मुझो नालो हाफिज मोहम्मद इस्लाम नूनारी है। इन जो जवाब बिल्कुल आसान है। ये असाजा जे बार असाजी मामूली गफलत के करे जिंदगी भर माजूर रहजी वजन था। अगस्त में दहन साल तई जे बार पोलियो बूस्टर डोज जो है वो लाजमी लग रहा है। पोलियो जहा कुछ अगर जरात रह भी वह अल्लाह के हुक्म से खत्म थी वा बच्चों हमेशा के लिए महफूज रहो ए बन भी माजूर यो सबब न बनबो।

0: सिया है सिंध जी दिल ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे लकी करो लकी।

बस साईं ॾाढो भलो गानो हुन खां अलावा असां सां गॾु पैनल ते कुझु तव्हांजो मैसेजिस आहिनि गोठ नबीदा बमरो नारो खां इमाम ॾिनो बमरू भाउ सां गॾु आहे मिठड़ी अदड़ी ख़ुशि आहीं चओ था प्यारी भेण अॼु असां वटि सखर जा महिमान आयल आहिनि तव्हांजी ज़बान सची ऐं मिठी आहे लॻे थो अॼु जेको बि ॻाल्हाईंदसि उहो सच थी वेंदो पोइ इलाही इलाही पंहिंजे लाइ दुआऊं घुरी वठो तव्हांजे लाइ बि ओके चाचा खालिद कहते हैं बेटा सिधो हमारे पास मेहमान बहुत कम आते हैं बट जब कोशिश कई अच्छा चाचा ये तो आपने एक पता नहीं इमेजिनरी बना ली एक चीज तो मैं पता नहीं भाई मैं कुछ कह नहीं सकती इसके ऊपर क्योंकि मेरी जिंदगी में मेरी चलती ही नहीं है तो बस मैं कैसे आपको हाँ या ना बोल दूँ अच्छा आसिम इन हदीसा हमारे साथ मौजूद हैं और आपको वेलकम कहते हैं दोनों हमारे साथ साथ मकसूद मलाह कहते हैं सदरा मुस्कान मास्टर मंजूर जो गानो बुधराए जा अच्छा जेको तव्हां लिखियो आहे इहो मिलियो त हलाईंदा न त कोई ॿियो मास्टर मंसूर जो गानो तव्हांखे ॿुधाए वठंदासीं सॉन्ग सिकिराणी का थैंक यू ओके जी मंज़ूर सिकिराणी आपके लिए लॻा देंगे

88.12

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by.
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाएं। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
3: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आयन त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा प्यारिया आहिनि त वरी ॿीहर छो प्यारियूं। मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे। त हिन जो आसान जवाबु इहो आहे, ही ॿार बि असां वटि अल्ला ताला जी हिकु वॾी नियामत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर इज़ाफ़ी खुराक लॻाइण लाज़मी आहे।
0: अभी ॿुधो पिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़।
4: ओ पिता जा पिताई, पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज़।

हर पहर जिंदगी की लहर जीएफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

ओके क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा गाना एंजॉय कर रहे हो, इसी के साथ साथ वापस आ चुके हैं आप लोगों के पास, प्रोग्राम सुन रहे हैं चलते का नाम मस्ती। बिल्कुल जी, आपके सिद्धराव के साथ मौजूद है यहाँ पर जितने भी प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ, सभी को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है प्रोग्राम की लास्ट लिंक।

ये सेहरा है ना, बलोची में सेहरा है, घोट का जिक्र आ रहा है और सेहरे का जिक्र आ रहा है, मोड़ का जिक्र आ रहा है, तो समझ आ रही है बात के मतलब क्या है। नगद नाज का टेंशन ना ले।

जी आप हमारे साथ मौजूद हैं। फेसबुक वाली समात है, जरा पोस्ट को लाइक और शेयर करके बताइए आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसी के साथ साथ जरा टॉपिक को फॉलो करते रहिएगा। उनका अलावा पैनल से तमाजा खोड़ मैसेजेस जमा थी वहां पैनल की तरफ भी अचूं था, पर मुख्य लगे तो पहला कुछ तमाजा कॉमेंट्स पड़ी बैठा। हाँ ये सही रहेगा। अच्छा अनवर भाट से गड मौजूद है। अनवर भाट आज मोहब्बत वन बाबा प्रोग्राम बुधो पे आई। अनवर भाट जो असो ढो भलो भाव है, अलग कड़ी गाल याद अच्छी हुई। और जी सादिया कहती आप ही ये पोएट्री छोड़ दिया है तेरे इंतजार करना, मेरी जान जब रात गुजर सकती है तो जिंदगी भी गुजर जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल सही था जो। और फहाद अली हमारे साथ मौजूद हैं। फहाद अली भाईजान क्या कहते हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अदी, क्या हाल है आपके। मुझे लेट हो गई बाजी, नींद आ गई थी पता ही नहीं चला, अब आंख खुली तो जल्दी फोन उठाकर मैसेज भेज दिया आपको। बहुत शुक्रिया भाईजान, ये आपकी मोहब्बतें होती हैं कसम। और कहते हैं कि शो नाइस बाजी, आपका प्रोग्राम बहुत दिल से सुनते हैं। रिदा को भी आपका शो पसंद आ गया है, आज भी रिदा प्रोग्राम सुन रही है। हेलो रिदा।

दफा डडुआ। ओके जी, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, क्या हाल है, आप ही ठीक हैं? आप मैं सुरैया फ्रॉम पनो आकिल से, आपका शो नारी से है, फर्स्ट टाइम आपका शो, अच्छा फर्स्ट टाइम आपके शो में शामिल हुई हूँ। प्लीज मुझे आज लाजमी मुनव्वर मौलाई का सॉन्ग सुनाना, हथम हथे क्या सी ॾाढो आई गानो सोनी जे नाले। सुरैया तवा के चौथा भली करी आया तवा सने प्रोग्राम में, थैंक यू। मां छा चवण वारी हस, एक तुझे लाए पांजा भी छड़िया, धारिया भी छड़िया, कुछ भी न बचो बाबा।

जी बिल्कुल, पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए। वैसे वो वाली बात हो गई ना कि मुझे तो लीव मी अलोन कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती, लोग वैसे ही छोड़ जाते। हाँ ला सही गल तो है। सुनाला फिलिपोटो कहते हैं, इश्क वो नहीं जो तुझे मेरा कर दे, इश्क वो है जो तुझे किसी और का ना होने दे। हाँ ओ या भली गाल कही थी, सफा भली गाल कही थी।

अच्छा फहद भाई जान, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे सारे बहुत सारे आपने कमेंट कर दिए हैं और प्यारी रिदा को भी वेलकम करते हैं। अखलाक भाई कहते हैं कि अजकल जा मानू मेहमान लाए हाँ ता सही था जो ता जड़ो कोई भी ना बाबा बकिलो ता मटन खारायो था मेहमान के सही गाल। अनवर भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम से उस्ताद बुखारी जी शायरी हाजिर आहे उन खां पो दिसूं त केड़ो गानो ता हलायो गानो ता सेट आ पाणे हली वेंदो बाकी उस्ताद बुखारी छा तो फरमाए यो दिसी था वठो। अच्छा लिखो था कासिद वनी यार के चो का नाजुक घड़ी बीमारी जिया जेड़ो हाल दिसी तेड़ो पेश कजा तोखे कसम तुझे परवरदिगार जो आला करे हकीम थकिया सदा आजार जिया केड़ो इलाज उस्ताद करे जैके तलब सोने जे दीदार जिया वाह वाह वाह वाह। मोहम्मद जमान भाई कहते हैं पैसे वालों पर यकीन करें बस गाल में दम आवे से असा पान न पैसा कमाए ये भी सही है। ओके जी ढो भलो गानो बुध सी ढो भलो बो गानो आज को बुधंदी मां भला किना गाना हलाईंदी आहियां न ॾिसो हिन लाइ भला भला गाना ॿुधंदासीं। अच्छा मायरा कहती है सिदरा टॉपिक में तो बहुत खुश होती हूँ जब हमारे घर मेहमान आते हैं क्या बात है क्या बात है। दर्दे दिल कहती है अस्सलाम वालेकुम चंदा जानी कैसी हैं वेलकम टू शो अमेजिंग वॉइस माशाल्लाह थैंक यू वेरी मच थैंक यू स्वीटी। प्रेमचंद भाई हमारे साथ हैं प्रेमचंद भाई तमाम जो मोहब्बतू आहिनि प्रोग्राम तमाम

अच्छा पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए. सनाला फुलपोटो भाई तमाम शमन जी गाने जी फरमाइश कई मां कोशिश कयां थी ताज पसंद जो गानो हली हो तो हलाई त न 5 बजे वाले प्रोग्राम में बुधी वठंदा सी. ठीक है अनवर भाई के टॉपिक कर दी आप जैसा कोई मेहमान आ जाए तो दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा. बहरहाल अच्छे मेहमान को रिस्पेक्ट देनी चाहिए और जो भी हाल हो उनके खातिर तवाजन करनी चाहिए क्योंकि वो खुदा की तरफ से भेजा हुआ अनमोल तोहफा होते हैं. ओके ओके वेरी नाइस वेरी नाइस. वासु भाई के भी अदी से डो तमाम बुधायो मां.

अच्छा दर्द दिल के नहीं टॉपिक चंदा जाने, मैं तो खुश होती हूँ। वैसे चंदा तुम कैसे, जान लेती हूँ आज मेहमान आए हैं, प्यारी पप्पो आई है। वाह साई वाह पप्पो बड़ी प्यारी खोड़ो ही न थो लगे तो मत।

अख्तियार अली सिंधी भाई आपका बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू। आगे जाएंगे तो जल्दी से पढ़ लेते हैं। एसएन एल यार, हेलो मैडम मुस्तरबाणी और हैं जी हम। अच्छा मायरा कहती है मुझो गानो तांजू गानो पंजी बजे वाले प्रोग्राम में बुद्धि वठना सी। ठीक है, साइकिल वाला गाना भी पंजी बजे वाले प्रोग्राम में बुद्धि वठना सी। हजार खंजो तो ही भाई हमारे साथ ही हजार बार तांजू मोहब्बत वन डीपी मिटाया है और खेलता है। हाँ हाँ ऐसे समझो एतरो तो समझो मैं अच्छे ही पड़े बाबा कल हलो हुयो पंज बजे वारो प्रोग्राम।

एतिरो जल्दी छो थो गुज़रे? बियो बियो ही वारो गानो बि असांखे ॿुधणो आहे, ही हलाईंदासीं बाबा मक़सूद मला जी फरमाइश ते गानो। और ये मौजूद मदद फुलजी स्टेशन खां फौजी पठान खान खोसो छोकिरी सिद्रा मुस्कान तव्हांजो आवाज़ भलो आहे। हाणे सिंधी ॻाल्हाईंदा कयो। मां कोशिश कंदी आहियां भाउ, मां प्रोग्राम में इलाही सिंधी ॻाल्हायां, ओहिड़ी एॾी सिंधी ॻाल्हायां, पर थोरो थी वेंदो आहे, सिंधी मुंहिंजी तिरकी पवंदी आहे। और साइमा मीर कहे थी, वाह सिद्रा वाह, जियो अपनी दुनिया में मस्त, हम अलग दुनिया है वाले हैं, जिन्हें आज तक कोई समझ ना सका, क्या पता आगे कोई समझ भी ले। मुख्य तो ना लगे पर हाँ, चलो अल्लाह में उम्मीद रखें। और कहती सलाम अम्मी जान, मरियाम भाई और भाभी को, टॉपिक ईद का समा होता है जैसे उस दिन हो, सब खुश और मस्ती मजाक होता है जिस दिन मेहमान आते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और कहती है साइमा मीर, ओ देखो प्यारी, मेरा गाना कितने रह गया, भूल गई ना, कौन सा, तुम तो आई अभी हो भाई, लास्ट लिंक में पहुंची आ साहिबा। वरी चए थी, ॾिसो मुंहिंजो गानो न हलायो, हाणे वठी कुटकी ॾियण जहिड़ी आहिनि। अच्छा ये मौजूद है सिद्रा, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, नालो लिखो मां पांजो नी शादी तो कड़ी भला। हक मौजूद मौलाना इस्लाम मदद बदीन खान, डॉक्टर हसीना साहिबा हमारे साथ है। सिद्रा मुस्कान, असा भी तमा से गड आयो, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा।

0: सब समझाती सब समझाती न न अखलाक भाग कावड़ न बस यो तो थोड़ो सुणे न सकम ये हों न मतलब डीपी खबर होंगी तो मानो सुणे वेंदो तो नालो पढ़ो तो खबर पई अच्छा हजार भा सही सही सही हिते तव्हां खां हाणे वठूं था इजाज़त वरी इनशाला तव्हां सां मिलूं था पंजे बजे वारे प्रोग्राम में सो जॉइन कंदा आहियूं जंहिंजा गाना रहिजी विया आहिनि उहे पंजे बजे वारे प्रोग्राम में हलाईंदा सही आहे पंहिंजो उहो ई सॼो ख़्यालु रखंदा किथे का ग़लती थी हुजे त माज़रत बाबा जंहिंजा फीडबैक रहिजी विया आहिनि गाना रहिजी विया आहिनि सभिनी खां माज़रत कयूं था सो मोकिलाणी नाहे सिलसिला में सा सलामत अलाह हाफ़िज़ बाय बाय लव यू ऑल एंड टेक केयर
1: تہذیب و ثقافت سے سجی

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
2: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
3: Jildi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
2: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
3: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
4: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
5: Brought to you by
6: Sona Urea Granular Mitti.
7: डीजी आईएसपीआर जे समर इंटर्नशिप 2026 में 21 हंधन ते 6000

0: 450 खां वधीक शागिर्द ऐं शागिर्दाणियुनि सां वेक DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी क़ौमी सलामती, दहशतगर्दी ऐं सोशल मीडिया जे चैलेंजेस ते ॻाल्हियूं कयूं ऐं शागिर्दनि जे सवालनि जा जवाब ॾिना। आबना हरमुज पार करे निकरंदड़ जहाज ते हमलो, हमले जो हिकु ॼणो मारिजी वियो। बरतानवी मेरी टाइम्स ऑपरेशन चयो इतलाउ मिलियो आहे त जहाज खे हिकण जातल नोइत जी प्रोजेक्टाइल सां निशानो बणायो वियो आहे। हमले में हिकु ॼणो मारिजी वियो ऐं जहाज जे इंजन रूम खे नुक़सान पहुतो। ईरान अमेरिका छिकताण घटाइण में तुर्किया किरदार अदा करण लाइ तयार। तुर्किया जे सदर रजब तैयब अर्दोगान ऐं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प विच में टेलीफोनिक राब्तो थियो। रजब तैयब अर्दोगान चयो आहे त ईरान अमेरिका छिकताण घटाइण में तुर्किया किरदार अदा करण लाइ तयार आहे। अवाम मथां बिजली किराइण जी तयारी। बिजली 2.5 रुपया फी यूनिट महांगी करण लाइ नेपरा में दरख़्वास्त दाख़िल। सेंट्रल पावर प्रोड्यूसिंग एजेंसी समूरे मुल्क में बिजली फी यूनिट 2.52 रुपया फी यूनिट महांगी करण जी नेपरा में दरख़्वास्त दाख़िल कराई छॾी। नेपरा मूजिब CCPA जी दरख़्वास्त ते ॿुधणी 27 अगस्त ते थींदी। मंज़ूरी जी सूरत में वापेदारनि ते GST समेत 41 अरब रुपयनि जो इज़ाफ़ी भार पवंदो। कराची में पेट्रोलियम लेवी ऐं ॿियनि मुतालबनि जी मंचाला जमायत इस्लामी जो 3 ॾींहं बि गवर्नर हाउस अॻियां धरणो जारी। लाहौर में वज़ीर आला हाउस, पिशावर ऐं कोटिया में बि गवर्नर हाउसेज अॻियां 3 ॾींहनि खां धरणा लॻल। जमायत इस्लामी अॻवाणनि जो चवण आहे त पेट्रोलियम लेवी जे नाले ते टैक्स वसूली बंदि कई वञे। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में गैर कानूनी भर्तियुनि जो केस अदालत धुरियुनि खां जवाब तलब करे वरितो। सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस अदनान अलकरीम मेमण जी सरबराई में आईनी बेंच वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में गुज़िरियल 5 सालनि दौरान गैर कानून भर्तियुनि खिलाफ़ केस जी ॿुधणी कई। अदालत चीफ सेक्रेटरी लेबर खाते जे सेक्रेटरी ऐं वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड जे सेक्रेटरी खां 3 हफ़्तनि में जवाब तलब करे वरितो। कराचीअ में कार सवार हथियारबंदनि जी मोटरसाइकिल ते फायरिंग। पसंदि जो परणो कंदड़ नारी क़तल। गुलशन हदीद लिंक रोड ते कार सवार हथियारबंदनि मोटरसाइकिल ते फायरिंग करे कुझु वक़्तु अॻु पसंदि जो परणो कंदड़ नारी फातिमा खे क़तल करे छडि॒यो। फायरिंग जे नतीजे में औरत जे मुड़ुस अकबर समेत 2 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। ज़ख़्मियुनि खे अस्पताल मुंतक़िल कयो। थारू शाह भरिसां मुबैना तौरु ज़हरीलो खीर पीअण सबबि मासूम भाइर फोत थी विया। घोट करीमदाद सियाल में ज़हरीलो खीर पीअण सबबि 6 वरियनि जो रिज़वान ऐं 8 वरियनि जो रिहान सियाल फोत थी विया। फोती ॿारनि जे वालिद जो चवणु आहे त राति देर सां ॿारनि खीर पीतो, जंहिं बाद ॿारनि खे पेट में सूर पियो। ॿारनि जा लाश घर पहुचण ते रोज राड़ो मची वियो।
1: Quiet. You're very disrespectful in front of this young man. Okay? Don't you find her disrespectful? He understands. Quiet. Who are you with?
2: I'm with CNN.
1: Fake news. You're fake news. You're a loud, boisterous person. You're fake news. Be quiet. Be quiet. Be quiet. You're a fake reporter, and you report fake news. Go ahead.
3: Mr. President, is there enough?
0: ऐं तूं घोड़ करण वारी कूड़ी रिपोर्टर आहीं, कूड़ियूं ख़बरूं ॾींदी आहीं। अमेरिकी सदर औरत साफ़ीअ ते ॾमिरजी पियो। व्हाइट हाउस में मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल दौरान CNN जे रिपोर्टर अमेरिकी सदर खां सवाल कयो त ट्रम्प खेस बेअदब चई नज़रअंदाज़ कयो। औरत साफ़ी ॾखण कोरिया बाबति सवाल कंदी रही। ट्रम्प खेस चयो त चुप कर, तूं अजायो घोड़ कंदी आहीं, तूं कूड़ी आहीं ऐं कूड़ियूं ख़बरूं ॾींदी आहीं।
4: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
5: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
6: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर से बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
7: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत

0: It's 3:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्ला लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं उन्हनि में का बि सुई इस्तेमालु न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मूज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
4: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
3: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, GFM की आवाज,
2: GFM नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: मुझे अपनी जितनी सफाई देनी थी ना मैं दे चुकी हूँ। अब अपना सर काट के मैं उनके कदमों में नहीं रखती।
1: तुम्हें अपना बोरिया बिस्तर समेट के यहाँ से निकलने की तैयारी करनी चाहिए।
2: जो रिश्ते सुख देने के बजाय दुख देने लगे उनका टूट जाना ही बेहतर है।

अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असांखे, साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे? त जेको आहे सो असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, उन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान। तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे, कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन, कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी

0: सघे थो कंहिं उमिरि ते रेशो वधीक ॾहनि सालनि खे घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाए
1: जिंदगी गुज़ारियो एतमाद सां कुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
3: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।

0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए FM की आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।

0: अप्रैल से जुम्मे की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बनके मोहब्बत का साज, जीए एफएम की आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: देखिए ड्रामा सीरियल एक मोहब्बत और पीर और मंगल रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास, जीए FM की आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज गीत संगीत।
1: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
2: ब्रॉट टू यू बाय
0: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: पीटीआई तर्जुमान चयो आहे त सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम ते मुकमल ऐं फौरी अमल दरामद जी उमीद आहे। कारकुन ऐं हामी इस्पताल ॿाहिरां गॾु न थियनि जीअं पीटीआई बानी जे इलाज में कंहिं बि क़िस्म जी रिकॉर्ड पैदा न थिए। पार्टी बानी खे इलाज बाबति अदालती हुकुम ते अमल दरामद खे अहम समझे थी ऐं संदसि तिबी सहूलियतुनि खे यकीनी बणाइण चाहे थी।

0: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आहिनि त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा पीआरिया आहिनि त वरी ॿीहर छो पीआरियूं। मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे। त इन जो आसान जवाबु इहो आहे, ही ॿार बि असां वटि अल्ला ताला जी वॾी नेमत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लगाइणु लाज़मी आहे।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
2: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
3: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास, GAFM की आवाज,
2: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: दस्तक देखिए हर जुमा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, GAFM की आवाज।
1: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल छुप छुप के फर्स्ट रमजान से रोजाना रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस पर।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए FM की आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: देखिए नई ड्रामा सीरियल हम राही 27 मार्च से जुमे और हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए एफएम की आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

آفیسر ऐं डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेस सिंध तरफ़ां जवाब जमा। अदालत PPHIA जे चीफ एग्जीक्यूटिव आफिसर जावेद जाखराणी खे ईंदड़ बुधनीअ ते ज़ाती हैसियत में पेश थियण जो हुकम। DG खे पिण अदालत ॾाढो मौजूदु रहण जी हिदायत ऐं अॻुवाई रिपोर्ट तलब। दस्तख़्वास्त गुज़ार बुज़ुर्ग वापारी मौक़े तयार कयो आहे त बुनियादी सिहत जूं सहूलियतूं आवाम जो बुनियादी हक़ आहिनि। सरकारी सिहत मर्कज़नि जो इंतज़ाम निजी इदारे हवाले करण बदिरां सिहत खाते जी इंतज़ामी ऐं फनी सलाहियतनि खे बहितर पाइण ते ध्यानु ॾियणु घुरिजे।

रांची में कार सवार हथियारबंदन की मोटरसाइकिल से फायरिंग पसंद करणो कंदड़ नारी कतल गुशन दे लिंक रोड से कार सवार हथियारबंदन मोटरसाइकिल से फायरिंग कर कुछ वक्त तक पसंद करणो कंदड़ नारी फातिमा के कतल कर छोड़ो। फायरिंग के नतीजे में औरत के मुड़स अकबर समेत पंद्रह जणा जख्मी अस्पताल मुंतकिल।

0: quiet. You're very disrespectful in front of this young man. Okay? Don't you find him disrespectful? He understands. Quiet. Who are you with?
1: CNN.
0: Fake news. You're fake news. You're loud. You're a loud, boisterous person. You're fake news. Be quiet. Be quiet.
1: Quiet.
0: Reporter. And you report fake news. Go ahead.
2: ऐं तो गोड़ करण वारी कूड़ी रिपोर्टर आहीं। कूड़ियूं ख़बरूं ॾींदी आहीं। अमरीकी सदर औरत साफ़ी ते डमर चिपियो। व्हाइट हाउस में मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल दौरान सीएनएन जी रिपोर्टर अमरीकी सदर खां सवाल कयो त ट्रंप खेसि बेअदब चई नज़रअंदाज़ कयो। औरत साफ़ी ॾखण कोरिया बाबति सवाल कंदी रही। ट्रंप खेसि चयो, चुप कर, तूं अजायो गोड़ कंदी आहीं, तूं कूड़ी आहीं ऐं कूड़ियूं ख़बरूं ॾींदी आहीं। यूएसएस लिंकन ते खाधे पीते जी शयुनि जी खोट वारी सीएनएन जी ख़बर कूड़ी हुई।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
2: अक्सर वालदेन जो यो चवण हों असां बार बार पंजे बारन के पोलियो का कतरा छो प्यारियों जो असां जे बार पहिरीं पोलियो का कतरा पी चुको है। मुझो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लैल है। मां बारन जे शोबे में खिदमत अंजाम दियां तो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीण सां बार जी इम्यूनिटी जेका उहा बेहतर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मूज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो, बुदंदा रहो।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए FM की आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए एफएम की आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: परवरिश देखिए हर पीर और मंगल रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास, GAFM की आवाज,
1: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज।

0: भाई हमने तो ये देखा है कि लड़कियों की जिस जगह शादी होती है उस घर को वो जन्नत बना दे।
1: जाओ जी सब तैयार, ये घर आना है शाहकार।

0: आसपास की चौकी पड़ी होगी और लोग कह रहे होंगे मरहुमा बहुत ही खबीस खातून थी।
1: प्यार परिंदा फड़ फड़ करके फुर से यूं उड़ जाए, जो कहते थे वाह वाह उनको अब कहते हैं।

0: देखिए ड्रामा सीरियल एक भूल रोजाना रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास, जीए FM की आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दारा हो।

0: मिर्जा की हीर देखिए 8 अप्रैल से हर बुध और जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, GAFM की आवाज।
1: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: मोहब्बत थी यार, मेरी जिंदगी थी वो। मेरी जिंदगी है तू,
1: मेरी जिंदगी है तू। देखिए हर जुमा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
2: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
1: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास। जीए FM की आवाज,
2: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
2: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
1: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास। जीए FM की आवाज,
2: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल मैं जमीन तू आसमान बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए एफएम की आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: आवाज।
1: DAFM नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो। हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।
3: हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं, अब बता कौन से धागे को जुदा

0: आपका और अब्बू का रिश्ता जो नहीं चल रहा, नहीं चल सकता।
1: माँ चला के आफ्ता होना तो लोग बेटियों के किरदार पे भी सॉन्ग नहीं उठाते।

0: देखिए ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ पीर से जुमेरात रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: तहजीब सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास। जीए एफएम।

0: आवाज।
1: DAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान बधाए।
3: आप तो हक मांग रहे हैं, जानमान के लिए हक मांग रहे हैं, उनका हक था, उनके लीगल उनका लीगल लॉफुल राइट है कि उनका इलाज करवाया जाता है। तो गवर्नमेंट भी लॉ तोड़ गया आगे से। इमरान खान जेल में इसलिए है क्योंकि 80-85% लोग उनके पीछे खड़े हैं।
4: सुप्रीम कोर्ट तहरीक इंसाफ से बानी के बिंडियन अंदर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म ॾेई छॾियो। अदालत पीटीआई बानी जे इलाज लाइ मेडिकल बोर्ड जोड़ण जो हुकुम ॾींदे हेल ताईं थियल इलाज जो समूरो रिकॉर्ड तलब करे वरितो। मेडिकल बोर्ड में फिजिशियन, जनरल सर्जन, इंटरनल मेडिसन, आई स्पेशलिस्ट ऐं कार्डियोलॉजिस्ट शामिल करण जी हिदायत। डॉक्टर फैसल सुल्तान ऐं उस्मा खान खे बि इलाज में शरीक रहण जी इजाज़त। पीटीआई बानी सां गर्भातियुनि जे हफ़्ते में हिकु भेरो मुलाक़ात ऐं पुटनि सां ॿ भेरा टेलीफोनिक ॻाल्हि ॿोल करण जो हुकुम। सुप्रीम कोर्ट पीटीआई बानी खे अस्पताल मुंतकिल करण बाबति ॿुधणीअ जो लिखित में हुकुम जारी करे छॾियो। अदालत चयो आहे त कैदी खे जेल में हुजण बावजूद इंसानी वर्ताव ऐं ज़रूरी तिबी सहूलियतुनि जो हक़ हासिल आहे। पीटीआई बानी जी सिहत बाबति ॼाण सियासी फ़ाइदे लाइ इस्तेमाल न करे सघबी। बानी जे इलाज दौरान शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में को बि अवामी भेड़ न थींदो। हुकुम जी भजगड़ी ते ॾिनल सहूलियतूं फौरी तौर वापसि वठी सघजनि थियूं। वफ़ाक़ी हुकूमत पीटीआई बानी जी अस्पताल मुंतकिली बाबति हुकुम जो नए सिर जाइज़ो वठण लाइ अदालत सां राब्तो करण जो ऐलान करे छॾियो। कानून वारे वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ चयो आहे त पीटीआई बानी जी अस्पताल मुंतकिली बाबति हुकुम जो जाइज़ो वरितो वियो। अदालती हुकुम जो नए सिर जाइज़ो वठण लाइ अदालत सां राब्तो कयो वेंदो। वफ़ाक़ी वज़ीर तारिक फज़ल चौधरी चयो आहे त पीटीआई बानी खे अस्पताल मुंतकिल करण बाबति वफ़ाक़ी वज़ीर तारिक फज़ल चौधरी चयो आहे त पीटीआई बानी खे अस्पताल मुंतकिल करण बाबति सुप्रीम कोर्ट जो हुकुम ते जीअं जो तीअं अमल कयो वेंदो। वज़ीर आज़म वटि अदालत जे फ़ैसिले जी उबतड़ को बि इख़्तियार नाहे। हिन फ़ैसिले मुल्क में अदलिया जी आज़ादी साबित करे छॾी आहे। अदालतनि जे फ़ैसिलनि ते सियासी रदि अमल ॾियण बदिरां कानूनी रस्तो इख़्तियार कयो वञे। राणा सनाउल्ला चयो आहे त सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसिलो मेरिट ते ॿधल आहे। पीटीआई सही फोरम ते अचण में पाण देर कई, सिधो रस्तो इहो ई आहे। सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम ते पीटीआई बानी सां संदसि भेण नोरीन न्याज़ी जी मुलाकात। सिहत ऐं ॿियनि मामलनि ते ॻाल्हियूं। नोरीन न्याज़ी जी पीटीआई बानी खे सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम खां आगाही। ज़रियनि मुजिबि पीटीआई बानी ऐं नोरीन न्याज़ी जी मुलाकात 30 मिंटनि ताईं जारी रही। नोरीन न्याज़ी मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल खां सवाइ रवानी। पीटीआई पारां पार्टी बानी खे शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करण ऐं संदसि तिबी मायने लाइ माहिर डॉक्टरनि ते ॿधल मेडिकल बोर्ड जोड़ण वारे हुकुम जी आजियां। पीटीआई तर्जुमान चयो आहे त सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम ते मुकमल ऐं फौरी अमल दरामद कारकुन ऐं हामी अस्पताल ॿाहिरां गॾु न थियनि या पीटीआई बानी जे इलाज में कंहिं बि क़िस्म जी रुकावट पैदा न थिए। पार्टी बानी जे इलाज बाबति अदालती हुकुम ते अमल दरामद खे अहम समझे थी ऐं संदसि तिबी सहूलियतुनि खे यकीनी पाइण चाहे थी।
5: पहला टेक क्या है नून लीग का? आज डॉक्टर साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने का हुक्म आया सुप्रीम कोर्ट से।
6: देखिए ये गाँव से जाना था वहाँ वो चला गया। मुझे लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब की कुदरत के खिलाफ फिर साजिश है।
4: पीटीआई बानी के जेॾां वञणो हो ओॾां वञी चुको आहे।

मूंखे लॻे थो त हिकु भेरो ॿीहर नवाज़ शरीफ़ जी हुकूमत ख़िलाफ़ साज़िश थियण शुरू थी वई आहे। नून लीग जे सेनेटर नासिर भट जो अदालती फैसले ते रदि अमल। नासिर भट चयो त मौजूदा सूरत हाल खे सियासी हवाले सां बि ॾिसण जी ज़रूरत आहे। हुकूमत ख़िलाफ़ कंहिं बि मुबैना साज़िश खे कामयाब थियण न ॾिनो आहे। जे यू आई सरबराह मौलाना फज़ल रहमान चयो आहे त पीटीआई बानी बाबति अदालती फैसलो जेको अजायो इहो पहिरियां अचणु घुर्जे। हा, सूबनि जी हिमायत या मुखालफत में का बि लकीर न करणु घुर्जे। कंहिं मामले ते लकीर कढण बदिरां बहस करे ॾिठो वञे त कहिड़ी शइ मुमकिन आहे ऐं कहिड़ी न। कंहिं बि मामले में लकीर कढण सां सदाई नुक़सान थियो आहे। हुकमरान हिते इतिहाद ऐं आज़ाद कश्मीर में हिक ॿिए मथां इल्ज़ाम लॻाए रहिया आहिनि। खीसो ख़ाली हुजे ऐं वसीला न हुजनि त अव्हां घर बि नथा हलाए सघो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ पाकिस्तान ऑफिस जो इफ़्तिताह करे छॾियो। गूगल जे नायब सदर विल्सन ऐं संदसि टीम जी पाकिस्तान अचण ते आजी आहे। मुलाकात दौरान टेक्नोलॉजी खे हथी ॾियण समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ॻाल्हियूं। शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त गूगल दुनिया में मशहूर टेक्नोलॉजी कंपनी आहे। पाकिस्तान गूगल लाइ हिकु अहम ऐं ख़ूबसूरत नए सफ़र जी शुरूआत आहे। हिते तमामु घणा मौक़ा आहिनि। गूगल जे नायब सदर जो चवण आहे त गूगल पाकिस्तान लाइ डिघी पोते वारी भाईवारी जो ख़्वाहिशमंद आहे। पाकिस्तान भारत में थींदड़ गिरफ़्तारियुनि खे पाकिस्तान सां जोड़ण जो इल्ज़ाम रद्द करे छॾियो। भारतीय घर वज़ीर जूं दावाऊं बेबुनियाद करार। परडे॒ही तर्जुमान जो चवण आहे त भारतीय गिरफ़्तारियूं ऐं पाकिस्तान जो इल्ज़ाम सिर्फ़ अंदरूनी सियासी मक़सद हासिल करण लाइ प्रोपेगेंडा आहे। भारत दहशतगर्दनि खे माली सहकार फ़राहम करण समेत ॿियनि मुल्कनि में दहशतगर्दी कराए रहियो आहे। कुलभूषण यादव केस वाज़ह सबूत आहे। बेबुनियाद इल्ज़ाम भारतीय दहशतगर्दीअ तां आलमी ध्यानु हटाए नथा सघनि। सिंध कापीना 25 एकड़ ताईं ज़मीन रखंदड़ कणक जे आबादगरनि लाइ डीएपी सब्सिडी पैकेज जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। नवनि हारियुनि जी रजिस्ट्रेशन ऐं मौजूदा रजिस्ट्रेशन जी ॿीहर तस्दीक जी पिण मंज़ूरी। 6,13,000 रजिस्टर्ड हारियुनि खे मजमूई तौर 20 अरब रूपियनि जी सब्सिडी फराहम करण जो फ़ैसिलो। वॾे वज़ीर जी सदारत हेठि सिंध काबीना जे इजलास में 193 किलो में चेलहार वाटर सप्लाई सिस्टम PHED हवाले करण जी बि मंज़ूरी। मिठी स्टार वॉश प्रोग्राम जे मुआदे जे मुसविदे जी मंज़ूरी खां

क्या विदा अमन सुबे लाए सुधी दिनी भाई सीनियर सुभाई वसीर शाह जी ने नाम में मरता अटे जी फ्लोर मिल स्कीम अत 112 रुपया फी किलो मुकरर कई है जैसे सख्ती से अमल कराया वो।

ऐं खसारे में हलंदड़ मुल्कनि दर पंजटीह सूबनि जी ॻाल्हि कई पई के केर बि टोड़े नथो सघे। मुल्क जे अदीबनि दानिश्वरनि लेखकनि ऐं कानूनदाननि नवनि सूबनि जी ॻाल्हियुनि खे सियासी नारो करार ॾेई छॾियो। कराची में दानिश्वर फोरम पारां सिंध जे इम्कानी विरागीअ ख़िलाफ़ मुल्कगीर कॉन्फ्रेंस खे ख़िताब कंदे नसीर मेमर, ताहिर हुसैन, नसीम ज़ाहिर ऐं शाज़िया निज़ामाणी चयो त हू समझनि था त कराची खां जेकरे ई सिस्टम ख़राब थियो माशी तबाही में सूबनि जो को बि हथ नाहे। सिंध खे ज़मीनूं ऐं पाणी ॾियण खां इनकार करण जी सज़ा ॾिनी पई वञे। सीनियर सूबाई वज़ीर शजील नामेमण चयो आहे त आइन में नवां सूबा ठाहिण जो तरीक़ेकार मौजूद आहे ऐं को बि शख़्स या इदारो आइनी तरीक़ेकार खां ॿाहिरि नथो वञी सघे। अवाम जा चूंडियल नुमाइंदा ऐवान में वेठा आहिनि, कंहिंखे परेशान थियण जी ज़रूरत नाहे। पीपल्स पार्टी ऐं सिंध हुकूमत जे मौक़िफ़ में का बि तब्दीली न ईंदी। काबीना इजलास बाद मीडिया सां ॻाल्हाईंदे शर्जील मेमण चयो त राणा सनावला अॼु सुबुह चयो आहे त कंहिं बि काबीना इजलास में अहिड़ी ॻाल्हि न थी हुई। ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी ऐं मुस्तफ़ा कमाल सियासी तौर ख़तम थी चुका आहिनि ऐं ॼाणे वाणे इश्ताल अंगेज़ ॻाल्हियूं पिया कनि। पीटीआई बानी जी सिहत लाइ दुआगु आहियां। बीमारी ते इंसानियत जो दामन न चढ़णु घुर्जे। ऑपरेशन जे तहत बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस जूं कार्रवाइयूं, वधीक नव दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिब सिक्योरिटी फोर्सेस ज़ियारत, हताई ऐं सोराब में ॻुझे इतलाउ ते ऑपरेशन कयो, जंहिं दौरान नव दहशतगर्द मारिजी विया। मारिजी वियल दहशतगर्दनि वटां वॾी मक़दार में हथियार बि हथ कया विया। पर इंटर्नशिप 2026 में 21 हंधनि ते 6,150 खां वधीक शागिर्दनि ऐं शागिर्दनि सां वेहक। TGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी क़ौमी सलामती, दहशतगर्दी ऐं सोशल मीडिया जे चैलेंजेस ते ॻाल्हियूं कयूं ऐं शागिर्दनि जे सवालनि जा दलीलनि सां जवाब ॾिना। अवाम मथां बिजली किराइण जी तयारी, बिजली 28 रूपया फी यूनिट महांगी करण लाइ नेपरा में दरख़्वास्त दाख़िल। सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी समूरे मुल्क में बिजली फी यूनिट 2.52 रूपया फी यूनिट महांगी करण जी नेपरा में दरख़्वास्त दाख़िल कराए छॾी। नेपरा मूजिब CCPA जी दरख़्वास्त ॿुधणी 27 अगस्त ते थींदी। मंज़ूरी जी सूरत में वाइपेदारनि ते GST समेत 41 अरब रूपियनि जो इज़ाफ़ी भार पवंदो। कराची में पेट्रोलियम लेवी ऐं ॿियनि मुतालबनि जी मञता लाइ जमायत इस्लामी जो टें ॾींहुं बि गवर्नर हाउस अॻियां धरणो जारी। लाहौर में वसियल हाउस, पिशावर ऐं कोयटा में बि गवर्नर हाउसेस अॻियां 3 ॾींहनि खां धरणा लॻल। जमायत इस्लामी अॻवाननि जो चवण आहे त पेट्रोलियम लेवी जे नाले ते टैक्स वसूली बंदि कई वञे।

इंडिया एक्शन कमेटी जो सिंध मां हुआ ऐं गुम थियल ॿारनि जी बाज़ाबी लाइ सिंध शाम ऐं ग़रीब आहे तहरीक शुरू करण जो ऐलान। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे अॻवाणनि चयो त कराची मां रैली शुरू करे माण्हुनि खे आगाही ॾिनी वेंदी। असांजी हर शाम शाम ग़रीब आहे, माण्हू पंहिंजनि ॿारनि जी हिफ़ाज़त पाण कनि। प्रिया कुमारी जी बाज़ियाबी लाइ बबरलो में थियल एहतजाज में केतिरनि ॿारनि जा वालदेन पहुता। अफ़सोस, अनथियल ॿारनि जे वालदेन ते दहशत दाख़िल कया विया।

0: ये फितूर मिरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए एफएम की आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज। बुधंदा रहो।